तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरशां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरण पारस हन। जे लोहा पारस नाल छुआ देईए तां ओ लोहा नहीं रहिंदा, सोना बन जांदा है। गुरु नानक दे चरण ऐसे पारस हन, जे इस दे नाल लोहे नूं भी छुआ देईए तां लोहा भी पारस बन जांदा है। साथ संगत बोलो श्री पारस, पेट पए से पारस।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग गया। आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले और सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने करां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी।
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं और

छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी दे समय बीबी सुलखणी होई है। बहुतियां थावां ते विचारी गई लेकिन कितों पुत्र दी दात ना मिली। शिवालयां ते भी गई, जोगियां दे मठां विच भी गई, कबरां नूं भी जाके पूजिया, मणि मसाणा विच भी गई लेकिन कितों खरैत ना पई। ताईं किसे ने सुलखणी नूं सरोत पाई, सुलखणीए जे पुत्र चाहुंदी है तां गुरु नानक दे दर ते जा। इस वेले गुरु नानक दी छेवीं जोत मीरी पीरी दा मालक गुरु हरगोबिंद अकाल तख्त ते सुशोभित है। तू उन्हां दे चरणां विच जाके बेनती कर ते जो गुरु नानक दे दर ते जाके अरदास करदा है, मंग मंगदा है, ओ कदे फिर खाली नहीं लौटदा। साथ सगत बोलो श्री बीबी सुलखणी जदों मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी दे चरणां विच गई, जा बेनती कीती, सच्चे पातशाह तेरे चरणां विच अरदास है, मैं सारे द्वारे द्वारे डोल आई हां, कितों खरैत नहीं मिली, एक हुण तेरा दर रह गया और तेरे दर दी मैं स्रोत सुनी है, जो तेरे दर ते आउंदा ओ कदे खाली नहीं मुड़दा, मेरी भी चोली विच एक पुत्र दी दात पा दे, एक पुत्र बख्शो। मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी ने नेत्र बंद कीते और जदों अखां खोलियां ते आख्या आ सुलखणीए तेरे भागां विच तां सत जन्मां तक पुत्र लिखिया ही कोई नहीं। सत सगत बोलो श्री। बड़ी उदास बेचारी वापस तुर पई, जा रही ते रस्ते विच भाई गुरदास जी मिल गए, अखां विच आंसू सुलखणी दे। भाई गुरदास जी कहन लगे की गल है बीबी, आ गुरु नानक दे दर ते तां जेड़ा रोंदा होया आउंदा है ओ भी हसदा जाउंदा है, ते तू क्यों रो रही है? आख्या एक दात पुत्र दी मंगण आई सां, लेकिन आज गुरु नानक दे दर तो भी जवाब हो गया। भाई गुरदास जी कहन लगे साहब जी ने की आख्या है? आख्या साहब जी क्यों देन तेरे भागां विच पुत्र है ही कोई नहीं। ता भाई गुरदास जी कहन लगे ता तू बेनती करनी सी जे उत्थे भागां विच नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। सत सगत बोलो श्री। उत्थे भी लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी देण वाला तू ही है। ता बीबी सुलखणी जुगत दसी भाई गुरदास ने। भाई गुरदास जी कहन लगे जदों कल साहब जी साहब जी जाऊंगे ना बाहर घोड़े ते सवार होके, ता फिर तू रस्ते विच बेनती करी। आज बीबी सुलखणी रस्ते ते आके खड़ो गई क्योंकि पता सी कि आज इस रस्तियों मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी ने लंघना है। आके रस्ते ते खड़ो गई, जदों साहब जी आए घोड़े ते चढ़े ते बीबी सुलखणी ने चरण पकड़ ले। ओ गरीब निवाज कृपा करो, नाम मेरा सुलखणी, मैं वसदी हां चोबे, अर्ज करेनी हां गुरु हरगोबिंद अगे, अफल जांदी नू कोई फल लगे। सात संगत बोलो श्री। बेनती कर दी हां एक पुत्र दी दात। साहब जी कहन लगे तेनू कल जो किया सी तेरे भागां विच नहीं। आख्या फिर गरीब निवाज उत्थे भी भाग लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी भाग बनाउण वाला तू ही है ना, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण लिख दे। ऐसी जदों प्यार दी बेनती कीती साहब जी बड़े प्रसन्न हो, आख्या चंगा सुलखणीए तेनू पुत्र बख्शिया। बीबी सुलखणी हाथ जोड़ के कहन लगी मेनू बहुतियां ने किया तेरे घर पुत्र होएगा लेकिन अज तक होया कोई नहीं, हुण मेनू कहते इतवार नहीं, मेनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहन लगे अच्छा फिर कागज कलम लिया लिख देइए। होर तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नू, सामने एक ठीकरी पई सी घड़े दी,
ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ

मैं क्या मांगू कि चिथिर ना रहाई। तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई मैं मंगा की। हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान एक दखना हों तै पै मांगू। देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया है, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पापी बिशन डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोले नाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहे ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

जल बिन साख कुमलावती, उपजे नाही दाम, हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाए विश्राम। जित कर हर कंत ना प्रगटी, पाठ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संग तना हर अविनाशी ओहो। पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। इकस हर के नाम बिन अगे लिए खोए। दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न को।

हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिख्या रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर कीरी से होर कचु पिचु बोल दे से कूड़ी।

0: राजू बाबा ऐपड़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माता नांदी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नांदा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पाले तपते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर ओदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां, भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत मेरी और आपको पुठे पार पड़े जा रहे।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भगती करदा रहो अते हे दास नानक आख

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सी, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज। और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए होए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनूं मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नूं कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नूं कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया

0: पूर पूर देख दे,
1: फाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझो दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, पाप दिया पंडा ने जलाद बन दे, साहिबजादे इन

कबीर मानस जंदुर्लभ है, होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा।

तब एक मानस दे ही पाए, मानस जन्म अमूल पायो, वृथा काहे गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस दे ही पाए, इस दे को सिमरे देव पाजू हर की से पजो गोविंद भूल मत जाओ।

जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बाणी, पज लै रे मन सार पानी। अब ना पजस पजस कब पाई, आवे अंत ना भजया जाई। ए तेरे अवसर ए तेरी बार

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बहुते जुगहारे हो, फिरत फिरत

मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया मतन होए चलंब जे सतगुर पाया चले जन सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै चले जन सवार चलिया पक्ष जन सवार वाजा वाए सी चलिया

कई जन पैकेट पतंगा, कई जनम गाजर मीन कुरंगा, कई जनम पंखे सर्प होयो, कई जनम पंखे सर्प होयो।

आप संगत में बैठे हैं, यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर गावे। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को है,